गुरु प्यारी साध संगत जी कीर्तन दी तनिखाजी प्रवान करना जी। अज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ज्योति जोत दिवस है। सो सतगुरु जी कृपा कर सारी संगत को उन्होंने उपदेशों के उपर चलन की मत समर्थ बख्शिश कर। आओ जी हुण साडे अति सत्कार जो ज्ञानी दलजीत सिंह जी उन्हां पासों आपां लड़ीवार गुर इतिहास श्रवण करना करिए जी। आप सब जी ने असीस बख्शिश करनी फतेह गजाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बनाई नानक जीवा देख बढ़ाई। इसका बाल नाही सहाथ कर्म क्रम सर्व कुना था क्या कर बपरा जियो जो दिख पावे सोई फन थियो कब हुच नीच मह बसा कब सो घर खरंग हसा कब नींद चिंद ब्याव हार कब हु आकाश पायाल कब बेत ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कब नृत्य कर वह पात कब सोय रह दिन रात कब हु मह क्रोध विकराल कब हु सर्व की उतरवाल

ब्रह्मचर्यास्पदि जिसका अंतर राजा वुमान सो नर्क पाति उवत स्वान जो जाना में जो बन वंत सो उवत बेष्टा का जनता उसका कर्म वंत कहव जन्म मारा बह जोन परमावत अनुपम का जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कर बाज कह हृदय गरीबी वसावन रन की हम कता का सुख पावत नवंदा हुई कर कर बाव तृण समान काश संग न जाय बहुल कर मान कुपर कर आस पल पितरता को विनाश सर्वत्याव जाने बलवंत खेन में हो जाय बसमंत कैसा नाम बाधा अहंकारी धर्मराज तस्करी कुवारी गुरु प्रसाद जाको मिटे अभिमान सो जान नानक दरगह प्रवान कूट कर्म कर हवतारी श्रम पावे सकल बिरथारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर अवतार अनक जतन कर आत्मन द्रवे हर दरगह कहु कैसे कवे आवश्यक जो पला कहवे जिसे पला इंद्र घटना सर्वग्रिय जाको मन हुए कहना अनुता के निर्मल हुए जब लग जाना मुझ ते काश हुए तब उसका सुख ना ही कोई जावे जाना मैं किस करता तब लाग करो जोन में फिर तो जब तार है को बैरी मुझे तब लाग दी चलना ही चाहिए था जब लाग मुह मगन संग वाय तब लाग धर्म राय देव सजाय प्रभु कृपाति बंधन दूटा गुरु प्रसाद नान कहा छूटा सहस कटी लाख करोड़ तब तर उतना आवे माया पाशा पावे अनक भोग बिखिया की करा न द्रवताव खाब खामर बिना संतोख नहीं को राजा सुख न मनोरथ प्रति सबका जनाम रंग सर्व सुख बड़ पागी के सब

आसन जाब पूर्ण करता प्रभ सोय तब जब की त्रास तब जम की त्रास कह हो के हुए जब अवगत अगोचर प्रभि का तब चित्रगुप्त कह पूछत लेख जौ नाथ निरंजन अगोचर कह दिता कौन छुटे कन बंधन बाधी

तह कौन कौ वान कौन अब वान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहु गीस जह जोत स्वरूप जो संग समाव तह किस को कौन द्रवताव करन करावन करण हार नान करते का नह समायर जब अब सुब अपन संग बनाय तब कौन माय बाय मित्र सुत पाय जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेद देव कह गुचीन जब अपन आप आप उतार तब सगन अब सगन कह विचार जहाँ अपन ऊचा अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा विस्मन विस्म रही विस्म नान कवनि गात जान हुआ जहाँ शाले शेर अपेद समाया ऊह कसव्य उन्मया सकवाप आदिश तेहो गुण का नाह प्रवेश जह एक एक एक भगवान दादा कौन अचंद कहला गचंदा जहाँ अपन आप आप दियार तह कौन कथ कौन सुन ने हर बहवे अंदूज ते ऊचा नानक सकवाप है पाह ऊचा जहाँ आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मह किन विस्तार

वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस। ए त्राहे पद पवड़ियां चढ़िया होए इक्कीस, सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण दे न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल। तिसवे धरती था प्रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नामे अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी करम पवै निसान। कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते काण महेश। केते वरमें घाड़त घड़ी है रूप।

चिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं। चरपट छंद त्वा प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता। रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे आगाध स्वरूपे नृपाद विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे स्रभंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं श्रीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वा प्रसाद कै जाहर जहूर हैं कै हाजर हजूर हैं हमेसल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं कै साहिब दिमाग हैं कै हुसनल चिराग हैं कै कामल करीम हैं कै राजक रहीम हैं कै रोजी देहंद हैं कै राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं कै हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं आरीफुल सिकन है हिरासल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है गंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बेहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेसल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीस है समस्तुल अदीस है आदेसुल अलेख है हमेसल अपेख है जी मीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुर अजमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मधुपार छंद त्वा प्रसाद मुण मन प्रणाम गुणगण मदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अणगण प्रणाम मुण मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुण मन प्रकाश गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम अणशिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर त्रास आ जान बाहो एक सदाहो ओ अंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अणशिज गात आजना बात अनझंझ गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हरि बोल मना छंद त्वा प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्ववारण है त्रित के धारण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग भर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर हैं करुणाकर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करुणाकृत हैं अकृताकृत हैं तरणी तृत हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजपाकृत हैं अमृतामृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं पवभंजन हैं अर्गंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जास के जास हैं भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्र।